0: 才找另外一边上班。
1: 对，安这安那是个不定安这我不清楚，我只搞来点一点。对，只搞的话，我定来还是搞完了。看看只搞的话，我定还是搞完了。安这哎呀，我跟当年苏跑，当年苏跑，没得没那样，我们都只搞了是你。对，只搞的话，我定还是搞完了。看看只搞的话，我定还是搞完了。安那个大考呀，你可以跟我们讲。तो सिंगर थिएटर एफ हिंदू मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर मंदिर म